0: वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जाते हैं। तो उन्हां दा फायदा यह होंगे कि जेडे बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी,
0: दे लिए ओह एक प्लेटफॉर्म, एक बेस बन जाते हैं,
1: अच्छा जी,
0: उन्हां नूं उन्हां बारे पहले ही नॉलेज हो जाती है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जेडे बच्चों ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेतर दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चों दे लिए सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
1: अच्छा जी।
0: हां जी
1: मैडम साहिबाना जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतियां दे नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतियां दा असीं धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े ही प्यार नाल सुणिया, तो
0: जी,
1: अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखबीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।

वेखो तुसी साका जलिया दे बाग दा होया सी जुल्म उथे खूनी राग दा ऊदम जहे जो दे उड़वारन।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा ए, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा ए। मखमल छड के कंडिया ते सोना बड़ा ही औखा ए।

0: 18 तक हैगी है, तो वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदा गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेडे अप्लाई कर सकता है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी,
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सैक्टर दी गल करदे आं, जेकर बच्चे ने
1: हाँ जी,
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पऊगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जेडे हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट में ये दसो भी जेड़े वोकेशनल जेड़े कोर्स होंगे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों के खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदां कटिंग सीविंग दे भी काफ़ी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफ़ी सारे हो जाते, इलैक्ट्रिशियन वेल्ड इलैक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जाते हैं। तां उहनां दा फायदा यह हुंदा कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं
1: हाँ
0: उहनां
1: जी,
0: दे लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जाते हैं,
1: अच्छा जी,
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जाती है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जिहड़े बच्चों ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेत्र दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चों दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी
1: मैडम साहबाना जी, तुसी बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतियां दे नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतियां दा असीं धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुनिया,
0: जी।
1: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखवीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।